0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: मध्यपश्चिम चाङ च्याक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

राम राम सन्जे पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङमा 35 केजी लागू औषध चैर सहित एक जनाहना पक्राउ करगिल बा। अस्थायी प्रहरी पोस्ट काला काटेसे खरगिलक प्रहरी टोलीसे दाङको गढा गाउँपालिका एक जुरौरी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बुटोलसे नेपालगंज होर जैतिकरक लुम्बिनी प्रदेश 01001-08-37 नम्बरको ईभी हाइस चेक जाँच गर्न क्रममा उक्त परिमार्ग चरस बरामद गर्लक हो। आइसको पछाडिको सिटमा रहेको डुठो करिया झ्वाला ओ एक ठो निलो रंगको सुटकेस जाँच गर्न क्रममा 35 केजी चरस जस्तो देखिना करिया पदार्थ फेला पर्लक हो। चेक जाँचको क्रममा उहो सिटमा रहेक नाउ थर ओ बतन्नी खुल्लक अन्दाजी 25 वर्षे एक पुरूष फरार हुइल। वकर पासा उक्त झ्वाला ओ सुटकेस आफन हुइलक कति भाडा तिर्कन यात्रा कर्लक रूकुम पूर्वक पूर्वे भूमे गाउँपालिका दुई बैसना अन्दाजी 26 वर्षीय हिकमत पुनहन नियन्त्रणमा लेगिल्बा। बरामद करगिलक लागू औषध सहित पुनहन नियन्त्रणमा लेकन घटनाबारे थप अनुसन्धान हुइति रहल्बा। दाङको राप्ती गाउँपालिका पाँच कालापानी स्थित राप्ती आधारभूत अस्पतालसे 70 वर्ष उपरको ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय व्यवहारी से नागरिक हन निशुल्क उपचार से उपलब्ध गरिदिया रहल। स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक अवस्था बाधक निबनस्कना उद्देश्यसे अस्पतालसे चिकित्सक परामर्श स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक औषधि तथा आधारभूत उपचार निशुल्क उपलब्ध करिलक जना रखल। राप्ती आधारभूत अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट डाक्टर सुशील केसीसे उपचार खर्चका कारण कौन फिर नागरिक स्वास्थ्य सेवा से वञ्चित निहोस्कना उद्देश्य से ऊ सेवा संचालन करगिलक बटवा रखल। आवश्यक पर्लक बेरो म्याहकनकला थप उपचार कलाक सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था से समन्वय कैखन रिफर करना व्यवस्थापी करगिलक उहाँ जानकारी दिइरहल। राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष प्रकाश विष्टसे स्थानीय सरकारसे स्वास्थ्य सेवा हन नागरिकको घर अंगनामा जो सहज रूपमा पहुँच योग्य बनिना उलक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढागिलक बटवा रखल। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2082-83 18,079 जनाहना लौ नागरिकता प्रदान गरिराखल। कार्यालयले सार्वजनिक करलक प्रगति विवरण अनुसार उ अवधिमा 18,009 जनासे वंशजका आधारमा 22 जनासे दाइक नाउसे नागरिकता लिहलबाट वस्तका 14 जनासे गैर आवासीय नेपाली नागरिकता 34 जनासे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ओ 10 जनासे अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करलबाट। प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिसल राज पाण्डेको अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराइसे 6,670, इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर से 7,155 ओ इलाका प्रशासन कार्यालय लमही से 4,254 जनाहन लौ नागरिकता प्रदान गरिगलक हो। कार्यालय से एक वर्षको अवधिमा 14,737 नागरिकताको प्रतिलिपि समेत जारी गरिराखल। घोराइसे 5,179, तुलसीपुर से 7,267 ओ लमही से 2,791 ठो प्रतिलिपि वितरण करगिलक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन से जानकारी दिइरहल। उस्तक दाङ जिल्ला भर 1,419 नाबालक परिचय पत्र वितरण करगिल बाकलसे 17,222 ठो राहदानी जारी करगिलक कार्यालय जना राखल। गुरू पूर्णिमाको अवसर पार्कन नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज जिल्ला कार्य समिति दाङसे घोराई 18 स्थित महावीर अझेनामा एक कार्यक्रमका आयोजना 30 जना गुरू हुकनकला सम्मान गरिराखल। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज दाङको अध्यक्ष गोविन्द पौडेलको अध्यक्षता एवं केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर दिवस मजगयाको बरपौना एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द न्यूपानीको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा 80 वसन्त पार्करलक नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजमा आबद्ध 30 जन आजीवन सदस्यको नक्ला सम्मान पत्र सहित सम्मान करगिल रह। कार्यक्रममा गुरू पूर्णिमाको महत्व ओ सम्मानित गुरू हुक्र निवृत्त शिक्षक समाजका पूर्व अध्यक्ष लालमणि पन्त ओ विष्णु प्रसाद शर्मा केन्द्रीय प्रतिनिधि हरिप्रसाद गौतम ओ जगतराम यादव सल्लाह
सल्लाहकार खगराज न्यूपाने, उस्तंक गढ़वा का अध्यक्ष कपिल देव खनाल, गोराई का अध्यक्ष बलदेव अधिकारी, तुलसीपुर का अध्यक्ष जगत बहादुर बस्नेत, सम्मानित गुरू हुकनक्षेप खुमानंद अधिकारी, ओ कोशराज निरौला, आजीवन सदस्य उत्तम कृष्ण मजगैया, बुनु लामिछाने लगायत का बारे में सम्मानित गुरू रोमहर्ष शर्मा अधिकारी शेष प्रकाश पारल रह कार्यक्रम में वक्ता हुकनक्षे आज का दिन शिक्षा देना गुरू हुक रो शिक्षा लेना शिष्य का निम्ति धिउर महत्व को दिन हुईलखुणसे विद्यादान मंत्र दान करना सबको गुरू हुकनक प्रति सम्मान करना अवसर को रूप में लिह पर्ना ओ इसे भावी पुस्ता से कुछ सीखना अवसर प्राप्त करना बटवा रख कार्यक्रम में निवृत्त शिक्षक समाज का जिला उपाध्यक्ष पद्म प्रसाद शर्मा को स्वागत मंतव्य से शुरू हुई कार्यक्रम में महिला उपाध्यक्ष सीता पौड़े से धन्यवाद ज्ञापन करल रही गोविंद प्रसाद पोखरल का वैदिक गान से शुरू हुई कार्यक्रम में संस्कृति टीम से भजन गीत तथा नृत्य प्रस्तुत करल रह कार्यक्रम का सहजीकरण जिला सचिव दामोदर पांडे से करल रह हुईठा दाजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन्जाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेकनी बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैं सारिक राम चौधरी विदाई टू रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: भ्राइदान।
1: संपर्क फोन नंबर 082-5630-27
0: 98-41-68-47-46।
1: नियमित रूप से दंत परीक्षण कराहोस दिन को दुई पटक अनिवार्य ब्रश करी सदैव स्वस्थ रहोस। सगरमाथा डेन्टल क्लिनिक द्वारा जनहित में जारी

0: কুরো জ্ঞান শক্তি দেই, নলেজ ইজ পাওয়ার। ফ্রান্সিস বেকনকো ইউ ভনাই সংসারমা সবভন্দা বড়ি উদ্ধৃত ভনাই মধ্যে এক হো কি নলেজ ইজ পাওয়ার, ইয়ানি জ্ঞান আফাইমা শক্তি। তর ইয়ো জ্ঞানমা কর্ম শক্তি জোড়িয়ে না মানে জ্ঞান আফাইমা শক্তি বন্দে। জ্ঞান আফাইমা শক্তি হো শ্রুতময় প্রজ্ঞাকো লেভেলমা, তর ইসলে পরিণাম ল্যাউনকো লাগি, কে ল্যাউনকো লাগি, পরিণাম ভনে জস্তো পরিণাম ল্যাউনকো লাগি জ্ঞান লাই কর্ম শক্তি সঙ্গ ইয়ানি কর্ম সঙ্গ জোড়িয়ে পছি বল্ল গয়ের ইয়ো জ্ঞান পরিণাম মুখী হচ্ছে। আলবার্ট আইনস্টাইনলে জ্ঞানকো বারেমা জ্ঞানকো স্রোতকো বারেমা কি খোলাকা ছিল ভনে, দ্য ভেরি সোর্স অফ নলেজ ইজ এক্সপিরিয়েন্স, ইয়ানি কুনেই চিজকো এক্সপেরিমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অনুভব গরিয়েন ভনে তো জ্ঞানকো কারণ বন্দৈন। জ্ঞানকো কারণ হো ইয়ানি জ্ঞানকো উৎপত্তি থল হো অনুভব ইয়া এক্সপেরিমেন্ট প্রয়োগ। এটি ভন্দই গর্দা মনোবিজ্ঞানকা শিখর পুরুষ শিখর পুরুষ দ্বয় যসলাই আমি সিগমন্ড ফ্রয়েড ভনের চিন্নে গর্দছৌ, র সিগমন্ড ফ্রয়েডকৈ কুনৈ বেলা শিষ্য রহেকা কার্ল গুস্তাফ জুং ইয়া ইয়ং, ই দুই সাইকোলজিস্টহরুলাই মানব ইতিহাসকা মহানতম সাইকোলজিস্টকো রূপমা এনে মনোবেত্তাকো রূপমা চিনিন্ছ। র ইনিহরুকৈ অনুসন্ধান র খোঁজবাট পহিলো চোটি কি জ্ঞান প্রাপ্ত ভয় ভনে মানছিকা সম্পূর্ণ মানসিক দুঃখহরু ত্যো বেলা ভন্দা বেশি দুঃখ অইলে ছ মানসিক দুঃখ, মানছিকা সম্পূর্ণ মানসিক দুঃখহরু তনাবহরু পীড়াহরু দর্দহরু যদি তেসলাই ভার্বলাইজ গরে না এক্সপ্রেস গরে না ভনে ত্যো পীড়ালে ভিতর অন্ডা পারের বসছ, অন্ডাবাট চল্লাহরু নিস্কিন্ছ, চল্লাহলে হল্লা গর্ছ। ইয়ানি মানছিমা জব জব কনফিউজন উৎপত্তি হুন্ছ, ডর উৎপত্তি হুন্ছ, জব জব ঈর্ষা জলন হুন্ছ, উসলে ত্যো ঈর্ষা ত্যো জলন ত্যো ডর লাই ভার্বলাইজ গর্নু পর্ছ, এক্সপ্রেস গর্নু পর্ছ, এক্সপ্রেস গরিয়েন ভনে ত্যো ভিতর ভিতরই তেসলে মানছেকো মানসিক স্বাস্থ্য খাইদিন্ছ, পরিণাম স্বরূপ কালান্তরমা উসলাই ডিপ্রেশন এঙ্গজাইটি আর স্কিজোফ্রেনিয়া জস্তা রোগ পনি হুন সক্ছ। পহিলো চোটি ফ্রয়েড র জুংলে যতি কাম গরে মনমাথি পহিলো চোটি কি মানসিক রোগ বাট বচ্নে হো ভনে র ভয়কো বাট বাইর আউনে হো ভনে মনমা লাগেকা কুরা ভন্ন জানু পর্ছ, কসাইলাই দোষ নদিকন কসাইমাথি আক্ষেপ আরোপ নদিকন আফলাই লাগেকো কুরা ভন্নু পর্ছ, ভার্বলাইজ গর্নু পর্ছ, যদি শুন্য মানছে ভয়েন ভনে বাথরুমমা বড়বড়ায় পনি হুন্ছ একলাই, ইয়া শুন্য মানছে ভয়েন ভনে জঙ্গলমা গয়ের রুখসঙ্গ কুরা গরে পনি হুন্ছ একলাই, খোলালাই শুনায় পনি হুন্ছ একলাই, যা গয়ের জস্তো ঠাউমা শুনায় পনি হুন্ছ, তর শুনাউনু পর্ছ পর্ছ পর্ছ, ই শুনাইয়েন ভনে ভিতর ভিতরই তি কুরাহরু তেলে অন্ডা পার্ছ ভনেকো মতলব তো কুরা বড়দই যাচ্ছ একুমুলেট হুদই যাচ্ছ, তেলে ঝন বড়ি কনফিউজন ঝন বড়ি পীড়া ঝন অনিদ্রাকো শিকার বনাই দিচ্ছ। ডিপ্রেশন ভনেকো এঙ্গজাইটি ভনেকো আজকো ভোলি হুনে রোগ হইন, স্বাত ডিপ্রেশন কসাইলে পনি হুদৈন, স্বাত এঙ্গজাইটি কসাইলে পনি হুদৈন, বর্ষং লাগ্ছ অনি তো বর্ষং জুন লাগ্ছ তো বর্ষং উল্লে কে গর্ছ মনমা কুরা থুপারের বসছ, কে পারের বসছ থুপারের বসছ, তেসকারণ তি কুরাহরুলাই লেখের ভয় পনি সুত্ন জাদা খাস গরি ইয়ো রাইটিং থেরাপি ভনের সুত্ন অগাড়ি মনমা কুরা খেলছ নকারাত্মক কুরা, তো নকারাত্মক কুরালাই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই খুই লেখের চ্যাত দিন পর্ছ ফাল দিন পর্ছ অনি বেল্ল গরে সুত অনি নিদ্রা সজিলো হচ্ছে। नत्र त्यो नकारात्मक कुरा मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ अनि त्यसले खाने त निद्रा हो. निद्रा खाएपछि फेरि नकारात्मक कुरा एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भन्छ नि, त्यसको विकास हुँदै जान्छ. त्यसैको परिणाम दुःख त छँदैछ, दुःख भन्दा पर मानसिक रोग छ. दुःख हुँदा त मान्छेले काम गर्न सक्छ, दुःख हुँदा त मान्छेले संसार चलाउन सक्छ, दुःखैको बावजुद पनि संसार चलाइरहेको हुन्छ. मानसिक रोग भयो भने संसार चलाउनै सक्छ, घरबार फेल हुन्छ, संसार फेल हुन्छ, ऊ मासुको हिँड्ने फिर्ने मासुको डल्लो मात्रै भइदिन्छ मानसिक रोग लागेर, किनकि उसले अरू केही गर्दैछ. अनि यहाँसम्म पुर्याउने केबाट त भन्नाले मनमा गुम्साइएका कुरा. त्यसैले सुत्न अगाडि लेख फाल्दे, लेख च्याप फाल्दे, या जलाइदे, त्यसलाई पढ्ने जमर्को नगर्नु, किनकि त्यो पढ्यो भने फेरि अवचेतन मनमा बसिरहन्छ. त्यसलाई पढ्ने होइन, वकल्ने फाल्ने, बोल्ने, एक्सप्रेसन दिने, लेख्ने, यो फ्रोइडले पत्ता लगाएका या जुनले पत्ता लगाएका कुरा छ. त्यसैले कुरोलाई बुझ्ने मान्छे अगाडि छ भने त भन्दै पनि भयो, बुझ्ने मान्छे छैन भने रुखलाई सुनाए पनि भयो, तर सुनाउनु पर्छ, एक्सप्रेसन दिनुपर्छ. अनि एक्सप्रेसन दिँदाखेरि, शब्दमा ल्याउँदाखेरि मानसिक समस्या, मानसिक रोग, मानसिक व्यथा कसरी कम हुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न उठ्छ, किनकि विज्ञानमा त कारण चाहिन्छ, बिना कारण त्यतिकै भनिदिएर भएन. यसलाई बुझ्नलाई यो हाम्रो मस्तिष्क जुन छ, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड. कन्सियस माइन्ड चाहिँ यो नियो कर्टेक्सले बुद्धि विचार तर्क गणित गर्ने भएकोले यो बुद्धि तर्क गणितको स्थान कन्सियस माइन्ड भयो. यो भनेको खास गरी फ्रन्टल लोब, अनि यसको ठ्याक्कै पछाडि त्यो फिलिङ ब्रेन छ, हाइपोक्याम्पस छ, एमिग्डाला छ, एमिग्डाला पछाडि छ. त्यो एमिग्डाला भनेको एउटा सानो, धेरैपल्ट भनियो, देशी बदम जस्तै आकारमा छ. यो एमिग्डाला भनेको हाम्रो डर, त्रास, असहजता, त्यो जुन फिल हुन्छ नि मान्छेलाई, त्यो बेला एमिग्डाला एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ. अब हेर्नुहोस् है, यसलाई पछाडिको ब्रेन भनौँ, त्यो ब्रेनको पछाडिको पार्ट, यो अगाडिको. यो चल्यो भने, यानि यो बुद्धि विचार तर्क गणित चल्यो भने, अनि डर जस्ता कुराहरू, ईर्ष्या जस्ता कुराहरू, जलन जस्ता कुराहरू, फिलिङ्समा आधारित कुराहरू कमजोर हुँदै जान्छ. यो बढी चल्यो भने फेरि बुद्धिमा आधारित कुराहरू कम हुँदै जान्छ. अर्थात् बुद्धि चल्यो भने भाव कम चल्छ, भाव चल्यो भने फेरि बुद्धि कम चल्छ. बुद्धि र भावको ब्यालेन्स हेर्नुहोस् है. भाव भनेको नेगेटिभ भावको कुरा पनि हो, पोजिटिभ भावै पनि. लभ इज ब्लाइन्ड भनेको त्यही हो नि. एकजना बुढाले सुनाउँदै थिए, अचेलका केटाकेटीहरू आमा बाउसँग जिन्दगीभर रहन्छन्, पाँच मिनट देखेको केटासँग केटीसँग फस्यो भने आमा बाबा बिर्सिन्छन्. किन भन्नाले बुद्धि फेल हुन्छ, क्या भाव चल्यो नि. प्रेम भनेको त भाव हो, रिस पनि भाव हो, डर पनि भाव हो. भाव चल्यो भने यो चल्दैन, यो चल्यो भने यो चल्दैन, यो चल्यो भने यो चल्दैन. सो भर्बलाइज योर थॉट्स, यानि शब्दलाई, भावलाई शब्दमा कन्भर्ट गर. भाव यहाँ यसले चाहिँ एमिग्डालालाई एक्टिभेट गरेर तपाईँलाई डर त्रासमा जाकिदिन्छ भावले. यसलाई शब्द दिना साथै अनि यहाँको फिलिङ यहाँ आउँछ. यो फिलिङ बिस्तारै सर्दै सर्दै यहाँसम्म आउँदा बुद्धि बन्छ. विचार मैले लेख्नु पर्यो नि, तपाईँलाई भएको पीडा, मलाई यो भयो, त्यो भयो, त्यो भयो, त्यो भयो, यसो भयो, त्यसो भयो, झे झे भन्नु छ. त्यो सबै कुरा शब्दमा दिना साथ नै शब्द प्रयोग गर्दा बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ. शब्दमा नै बुद्धि, यो मान्छेसँग मात्रै छ नि. त्यो बाँदरले त्यस्तो गर्न सक्दैन, कुकुरले त्यस्तो गर्न सक्दैन, उसलाई बहुत मालिकले झ्याम झ्याम पिटेको कारणले गर्दा उसले चाहिँ त्यसलाई शब्दमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैन. उसले फुक्छ, उसले कि टोक्छ. हामीले टोक्नु पनि भएन, फुक्नु पनि भएन, तर त्यसले त्यो कुरालाई शब्दमा रूपान्तरण गर्न सक्छ. सो एकजना साइकोलोजिस्ट एरोन बर्डी, अल्बर्ट एलिस अर्को साइकोलोजिस्ट, यी दुईजनाले 1960-80 को दशकभित्र एउटा थेरापी विकास गरे यो मानसिक समस्याबाट बाहिर ल्याउनको लागि. त्यो थेरापीलाई कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी भनिन्छ. त्यो कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापीमा पनि एउटा कन्सेप्ट के आयो त भने, तिमीलाई जे पीडा हुन्छ, जे दर्द हुन्छ, त्यो दर्द र पीडालाई शब्द दिनुपर्छ. गिव द वर्ड्स कन्सेप्ट पछि यसलाई नेम इट टु टेम इट भन्ने फ्रेजले यो कन्सेप्टलाई पपुलराइज गरायो. के रे, नेम इट टु टेम इट, टिएमई टेम, यो केम माने कन्ट्रोल गर्नु, केम माने कन्ट्रोल गर्नु, नेम इट टु टेम इट।
1: दात गिजत्ता मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा हरेक दिन अब घुराईमै।
2: त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमडीएस गर्नुभएका वरिष्ठ डेन्टल कन्सल्टेन्ट अर्थोडेन्टिस्ट डाक्टर चेतनारायण पाण्डेद्वारा बाङ्गोटिङ्गो छिचरो भएको, उछुटिएको र नमिलेको दाँतको सफल उपचार भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछौ। साथै यस डेन्टल क्लिनिकमा दाँत, मुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार भइरहेको छ।
1: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू:
3: दाँत, मुख तथा अनुहारको शल्य चिकित्सा सेवा,
1: अनुहारका हड्डी भाँचिएको जोड्ने,
3: दाँतको एक्सरे सेवा,
1: सामान्य तथा जटिल दाँत निकाल्ने,
3: ठिक तथा झुक्न मिल्ने नक्कली दाँत राख्ने सुविधा,
1: अत्याधुनिक मेसिनद्वारा दाँतको सफाई,
3: मेसिनबाट जरेदेखि दाँत फरिने,
1: दाँतको पोस्ट तथा कोल प्रविधिद्वारा उपचार,
3: किराले खाएको दाँतको विभिन्न पद्धतिद्वारा उपचार,
1: बालबालिकाको दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार।
3: साथै
2: वरिष्ठ डेन्टल कन्सल्टेन्ट अर्थोडेन्टिस्ट डाक्टर चेतनारायण पाण्डेद्वारा दैनिक रूपमा
3: बाङ्गोटिङ्गो दाँत तार बाँधेर मिलाउने सुविधा पनि छ।
4: सम्पर्क डी नोभा डेन्टल क्लिनिक, ट्राफिक रोड घोराही दान, जीवज्योति अस्पतालको 20 मिटर माथि। फोन 082562707।
5: के तपाईँ दाँत तथा गिजा सम्बन्धी कुनै पनि समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने दाङ घोराई न्यू रोड स्थित गणेश चित्रालयको अगाडि रहेको डायनामिक डेन्टल क्लिनिकमा विगत लामो समयदेखि काम गरी अनुभव सँगाल्नु भएका सिनियर डेन्टल सर्जन डाक्टर रश्मिता बस्नेत र सिनियर डेन्टल सर्जन डाक्टर रञ्जना खनालद्वारा सेवा दिँदै आइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
6: किराले खाएको दाँत निकाल्ने,
7: शल्यक्रिया गरेर जटिल दाँतहरू निकाल्ने,
6: खाली ठाउँमा दाँत राख्ने,
7: दाँतको जरैदेखि उपचार गर्ने,
6: भएको दाँतमा खुल राख्ने, दाँत सफा गर्ने, तार बाँध्ने, दाँत र गिजा सम्बन्धी मुख भित्रको सबै रोगको उपचार सेवा,
7: लेजर विधिद्वारा किराले खाएको दाँतमा सिमेन्ट भरिनुका साथै चाँदी र सिसा पनि भरिन्छ।
5: सम्पर्क डायनामिक डेन्टल क्लिनिक घोराई न्यू रोड गणेश चित्रालयको अगाडि। सम्पर्क फोन नम्बर 082590460, 98 29 81 50 53।